0: जनता केवल पांच दशक देखी
1: रेडियो भेरी एफएम, रेडियो भेरी एफएम,
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 / 102.7 मेगाहर्ट्ज
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
4: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व्यक्ति 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

भूत गणाभिषेवितं कपित जम्बो फलचारु वक्षणं कुमाश्रुतं शोक विनाशकारकं नमामि दिङ्गेश्वर पादपङ्कजं।